जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।

हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन और राग भैरवी में ठुमरी। आज ही कलाकार हैं शिल्पी पाल। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। शिल्पी पाल पहले प्रस्तुत कर रही हैं राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। तो आइए सुनते हैं राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल, कलाकार शिल्पी पाल।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन। लिसन टू अ ख्याल इन राग बिलास खानी तोड़ी and Thumri in Bhairavi. Our artist this morning, Shilpi Paul. Accompanying on the tabla, Pinaki Chakraborty, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal in Rag Bilas Khani Tori and a Thumri in Bhairavi by our artist, Shilpi Paul.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थी शिल्पी पाल। शिल्पी पाल अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रही हैं राग भैरवी में ठुमरी। तो आइए सुनते हैं ये भैरवी ठुमरी, कलाकार शिल्पी पाल।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये भैरवी ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी शिल्पी पाल। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग देशी तोड़ी में बांसुरी वादन। आज के कलाकार हैं सुदीप चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग देशी तोड़ी में बांसुरी वादन, कलाकार सुदीप चट्टोपाध्याय।
1: You are listening to a khayal in Raag Bilas Khani Tori and Tumri in Raag Bhairavi by our artist this morning, Shilpi Paul, accompanying on

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग देशी तोड़ी में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुदीप चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल इन राग देशी तोड़ी बाय आवर आर्टिस्ट सुदीप चट्टोपाध्याय, एकम्पानिंग ऑन द तबला सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सितार वादन, कलाकार है संदीप अपटे। प्रारंभ में आपने सितार पर प्रस्तुत किया राग गौड़ सारंग सुनते हैं। आपके साथ तबले पर है माधव मोड़क, तो आइए सुनते हैं सितार पर राग गौड़ सारंग, कलाकार संदीप अपटे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार पर राग गौड़ सारंग। कलाकार थे संदीप अपटे। आपके साथ तबले पर थे माधव मोड़क। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सितार पर राग हमीर बिलावल, कलाकार संदीप अपटे। आपके साथ तबले पर है माधव मोड़क।

श्रोताओं अभी आपने सुना सितार पर राग हमीर बिलाप। कलाकार थे संदीप अपटे। आज के सितार वादन के कार्यक्रम में संदीप अपटे द्वारा प्रस्तुत प्रारंभ में आप सुन रहे थे राग गौचारक और अंत में आपने सुना राग हमीर बिलावल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्न का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. Now listen to a flute recital in Raag Desh by Rohit Prasanna. The Vilambit Gat is set to Ek Taal and Drut Gat is set to Teen Taal.

0: और लीजिए अब सुनिए राग मधुवंती। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: नाउ लिसन टू राग मधुवंती। द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग मधुवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल इन राग मधुवंती बाय रोहित प्रसन्ना। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Na na na, ari na na.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वादन। कलाकार है यशवंत जाधव। आपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग हंसध्वनि सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके सबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग हंसध्वनि, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमाद सारंग, कलाकार यशवंत जाधव। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमाद सारंग, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग मदमात सारंग। कलाकार थे यशवंत जाधव। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विहाग में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं सुलेखा गुप्तू. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरिंदम चक्रवर्ती. तो लीजिए प्रस्तुत है राग विहाग में ख्याल, कलाकार सुलेखा गुप्तू.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंटरनेट म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ ख्याल इन द राग बिहाग. आवर आर्टिस्ट इज सुलेखा गुप्तू. Accompanying our artist on the tabla is Arindam Chakraborty. Listen now to the rag Bihag. Our artist is Sulekha Guptu.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिहाग में ख्याल सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी सुलेखा गुप्तू। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा। कलाकार हैं संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरिंदम चक्रवर्ती। संयुक्ता दास अपने गायन का आरंभ मिश्र पीलू ठुमरी से कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं ये मिश्र पीलू ठुमरी। कलाकार संयुक्ता दास।
1: You were listening to A Khayal in the Rag Bihag. Our artist was Sulekha Guptu. Accompanying our artist on the tabla was Arindam Chakraborty. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we present a Thumri and Dadra. Listen to a Mishra Pilu Thumri and Pilu Dadra by our artist Sanjukta Das. Accompanying her on the tabla is Arindam Chakraborty. Listen to a Mishra Pilu Thumri and Pilu Dadra by our artist Sanjukta Das. Accompanying her on the tabla is Arindam Chakraborty. Listen to Mishra Pilu Thumri and Pilu Dadra, our artist Sanjukta Das.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये मिश्र पीलू ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी संयुक्ता दास। संयुक्ता दास अपने गायन का समापन पीलू दादरा से कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं ये पीलू दादरा, कलाकार संयुक्ता दास।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये पीलू दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध।
1: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्री रफीक खान का वायलिन वादन। देवास घराने की प्रतिष्ठित संगीत परंपरा और उस्ताद रजब अली खान की शिष्य परंपरा से जुड़े श्री रफीक खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को गहराई और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक कुशल वायलिन वादक के रूप में वे अपनी उत्कृष्ट बोइंग तकनीक, स्वर की शुद्धता और राग विधान की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके संगीत में तकनीकी सटीकता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का सुंदर संतुलन दिखाई देता है, जिससे उनकी प्रत्येक प्रस्तुति आत्मीय और प्रभावशाली बन जाती है। श्री रफीक खान एकलवादन और संगत में भी समान रूप से दक्ष है। लहरा और लयकारी पर उनकी विशेष पकड़ है। वे सपाट तान, छूटकी तान और गमक जैसी तानों को अत्यंत कुशलता और सहजता से अपनी प्रस्तुतियों में पिरोते हैं। वर्ष 1994 से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टाफ आर्टिस्ट रहे श्री रफीक खान अगस्त 2026 में ए ग्रेड वायलिन वादक के रूप में आकाशवाणी अहमदाबाद से सेवानिवृत्त हुए। देश के अनेक प्रमुख शास्त्रीय संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके रफीक खान अपनी भावपूर्ण और नवोन्मेषी वायलिन प्रस्तुतियों के माध्यम से देवास घराने की संगीत परंपरा को निरंतर समृद्ध और प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आज की इस प्रस्तुति में श्री रफीक खान के साथ तबला पर संगत कर रहे हैं श्री हेमंत जोशी। श्री रफीक खान अपने वादन का आरंभ करेंगे राग मारू बिहाग से। इसकी विलंबित रचना विलंबित एक ताल में तथा द्रुत रचना द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
2: This is Akashwani. In tonight's broadcast of National Program of Music, we bring you a violin recital by Shri Rafiq Khan. Hailing from the distinguished Devas Gharana in the lineage of Ustad Rajab Ali Khan, Rafiq Khan carries forward a rich legacy of Hindustani classical music with depth and authenticity. A virtuoso violinist, he is acclaimed for his mastery of bowing technique, tonal purity and deep understanding of raga grammar. His music beautifully balances technical precision with emotional expression, making each performance both soulful and elevating. Equally proficient as a soloist and an accompanist, Shri Rafiq Khan is known for his expertise in lehra.

0: आपने अभी सुना राग मारू बिहाग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब श्री रफीक खान प्रस्तुत करेंगे राग जोग। इसकी रचनाएं विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मारू बिहाग। कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम, श्री रफीक खान विल नाउ प्रेजेंट राग जोग। द कॉम्पोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल एंड द्रुत तीन ताल रिस्पेक्टिवली।

0: आपने अभी सुना राग जोग। इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत श्री रफीक खान के वायलिन वादन का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। उनके साथ तबला पर संगत कर रहे थे श्री हेमंत जोशी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी अहमदाबाद द्वारा की गई। इसके साथ ही हम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रसारण आप तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहुंचाया गया।
1: You just heard राग जोग with that.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में. आपका स्वागत. सुनते हैं शास्त्रीय गायन. कलाकार है कविता खरवंडीकर. प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग रामकली. सुनते हैं विलंबित चित्ताल में निबद्ध रचना के बोल है सावरो रे घर जाने ना, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है उनसन लागी मोरी.

अभी आपने सुना कविता खरवंडीकर द्वारा प्रस्तुत राग रामकली। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्ये, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कविता खरवंडीकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है घड़िया गिनत जात, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मन ही मन मुरछाई, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है सुनरी येरी आज मैं का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कविता खरवंडीकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर. राग है जौनपुरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ और दो गतें. विलंबित गत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम कुमार मिश्रा. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गते, विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर, यू विल लिसन राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर। संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हरपल हर

समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7।

Yara maguna si di vela yu ranga puri ni eri na bari na galara.

ಕ್ಷಮ ಪದರಿ ಧರಿ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग झिंझोटे आलाप. विलंबित और द्रुत गतें तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Rag Jhinjhoti by Rajiv Verma. First listen to Alap, followed by Vilambit Gat and Drut Gat, which is set to Teen Taal. He is accompanied by Prasun Chatterjee on Tabla.

अभी आप राजीव वर्मा का सितार बजाया राग झिझोटी सुन रहे थे और अब सुनिए राग नंद में आलाप विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति।

0: की है प्रसून चैटर्जी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू राग झंझोटी बाय राजीव वर्मा। नाउ लिसन टू राग नंद। अलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल। इज अकंपनीड बाय प्रसून चैटर्जी ऑन तबला।

0: अभी आप राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग नंद सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग नंद बाय राजीव वर्मा। ही वाज अकंपनीड बाय प्रसून चटर्जी ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पूर्णिमा मोडक की गाई प्रस्तुत है कबीर की प्रसिद्ध रचना मन लागो मेरो यार फकीरी में।

हर दिन हर पल भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएनएल है। आइए अब सुनते हैं शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की भक्ति रचना।